0: या रात, खुशी हो या तन्हाई, हर वक्त एक आवाज साथ हो। रेडियो अमन 88.4 कारक आपके हर लम्हे का साथी।
1: रेडियो अमन करक आपको दे रहा है एक खुशखबरी। अब आप अपने दिल की आवाज रेडियो अमन करक के साथ मैसेज के जरिए भी शेयर कर सकते हैं। अब आप हर प्रोग्राम में फॉर्मेट के मुताबिक अपनी फरमाइशों और चाहतों का इजहार मैसेज के जरिए कर सकते हैं। मैसेज करने का तरीका बहुत ही आसान है। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, वहां पर टाइप करें RAK, फिर थोड़ी सी जगह छोड़कर अपना नाम लिखें, फिर अपने इलाके का नाम और अपना पैगाम लिखकर हमें 8583 यानी 8583 पर भेजें। आपका मैसेज हमारे प्रोग्राम की रौनक।
2: खबर को द लोबुद मैदान वी या द पार्लियमान, मसलक इलाकाई वी या कामी, खबर को स्तासु वी या स्तासु द चापेरियाल, रसौबा स्तासु वक द वागदार नतर बादारा। नो तरला सकोल शे तासु मौजुआती इल्मी और सेंसी मालूमात प अखबारी नड़े के द अखपल कोरबा अहमदजार सरा, सिर्फ और सिर्फ प अमन रेडियो नेटवर्क। अमन रेडियो नेटवर्क, जुन रंग अमन। खबर को द लोबुद मैदान वी या द पार्लियमान, मसलक इलाकाई वी या कामी, खबर को स्तासु वी या स्तासु द चापेरियाल, रसौबा स्तासु वक द वागदार नतर बादारा। नो तरला सकोल शे तासु मौजुआती इल्मी और सेंसी मालूमात प अखबारी नड़े के द अखपल कोरबा अहमदजार सरा, सिर्फ और सिर्फ प अमन रेडियो नेटवर्क। अमन रेडियो नेटवर्क, जुन रंग अमन।

नशो मिला एवं रसकरक रेडियो बने में एक रामला प्रोग्राम आ रहे दो इसमें क्रिक क्रीम हवाले सराय हबरे के वाले मुमा हम अरुसा शॉपिंग सेंटर ना इसमें क्रिक क्रीम रावल माशाल्लाह एवं हफ्ता इस्तेमाल से जमा पे नरमी सफा और हिस्ता शुए कजमा आवाज सो खम चर्त चर्त आवरी प्योज ली जरूर इसमें क्रिक क्रीम इस्तेमाल गए इसमें क्रिक क्रीम पेचर गले न अलावा बदन में देहरश हुई इसता से बदन और सरवस्वी ये मुसलमान पेम्पर देवाजी ऋषि राशि डॉक्टर मसलो के जबरदस्त

0: तड़ाई मासे में जी दार तो भी ये जो पदसा पर सीधे तसे हो खस्ती थी
1: जनाती से तारखना पसा पर के हम इसमा वाशिंग पाउडर हो खस्ती थी
0: इसमा वाशिंग पाउडर मड़ाई में जी मोह कोरता नेशनल और मल्टी नेशनल कपनेवल वाशिंग पाउडर वड़ी भी कुर्श अक्सर गिलार तक की जी दस रंगे सरा प्रोबरे
1: बिल्कुल तारखना दा गिले वे हर वक्त मुतहा कुर्श कड़ाले हो चे कराना में कुरता इसमा वाशिंग पाउडर वडल से रिकड़े दी और स्टूल कुर वाला ना फसूल दी
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सराबरो वो दर तो ये या चेप इश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खसूसियात थी
1: तारे खाना इश्मा वाशिंग पाउडर खास खसूसियात दागा दी चे कपड़े सब युक्शले को जोर ना जोर दाग पर गारंटे सर खत्म करी जाखर सजूत की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवात लोसीना नखर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दर तो ये दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफ बने अंदरून लकी गेट जान से बे गाले पर शे मार्केट से देश में मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफिज जहीर साहब सर उधर से मिला भी
2: कया कैसर द मंगल मिले ना एमओ इंतहाब द इश्मा वॉशिंग पाउडर
3: जयम आशिकुला दा बादर हेरना जमा पहचान दे इश्मा ब्लैक शाइन शैम्पू
4: इंजीनियर
5: मसूद दखकुली बन गुन्ना जमा पहचान दे इश्मा राइस फेस वॉश
6: जय मौलाना अब्दुल खालिक द मंगल मेलिना दिमो इंतहाब द इश्मा हर्बल ऑयल
7: जय ओंकार नूर खिताब फ्रॉम उरूसा शॉपिंग सेंटर अंबीरी कला जमा पहचान दे इश्मा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान

जी अस्सलाम वालेकुम जनाब भाई, ऑल प्रोडक्ट अवेलेबल वकास कॉस्मेटिक स्टोर पंदू जमजम मार्केट की कमखैन दुरुन जमा आवाज जरूरी पंदू जमजम मार्केट की वकास कॉस्मेटिक स्टोर दे चश्मा ऑल प्रोडक्ट ओसर मिलावेगी। हां अस्सलाम वालेकुम एंड वालेकुम सलाम माय क्यूट ब्रो, हाउ आर यू? आई लाइक योर शो, आई लाइक योर स्वीट वॉइस। मेवानूर एंड जुबैदा नूर फ्रॉम ब्यूटीफुल फलकोर यामे बेगाई खन नो कड़े स्टार शो मंग न दौर रे خون دے گڑے افغانستان والا گلشن

0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क।

0: ओके कवन माय डियर यू बल कलर खाली सुख तेरे सर कि मुझे ने कॉल करे सवे लो उड़ी अस्सलाम वालेकुम सलाम जी सुख द किम जी नाम
1: अजनर सवारी का करकना
0: शाय जुड़े आज अनुर शाह दो जुड़ा तो करना आओ तबियत बस शाय द डेरे रेजरो ना रखावे और रखा शवीवे अवेले तबा देवा वो तबा दे पगरी ना लुड़ा शाओ शाय अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा मतलब जो तबा देवा वे दे प्रोग्रामी ना ना अरविदल का ना अरविदल देखो पेदल है ना पेदल है खुश दे वेला ही ना शो ना अच्छा उस दाई ने वेला ही शो सब या ये रोता प्रोग्राम के हाँ अच्छा अच्छा वास हो बेदे चाचा है मुना पटकड़े है शो दास ये पटकड़े हुए सारा दे ना वो जार वे दशो न तली दश वे अच्छा जो तब आदेशी भी तब रखा शे हाँ बेली दाई ना शे अच्छा लो साइड ठेक तो जीरो आज फाशा में जो उस चाता उस सालों में ना के खाली टोले अब रिदुम को तब सालों में ना दी बास हो अच्छा जी चलो मुता हाँ मुझे दास ने भी चीज़ दे पश्चिमीर कड़ाई हो दाखो शादो तेरे यू दिया हाँ चलो जी डेरा डेरा मन्ना देख पल जोन डेर ख्याल सोता यो जहान मन्ना को ओके ओके जी काल लेकर शो इधर बख्शना बोली जी हुजीफा कंपनी स्किन पॉलिश इस्तेमाल कीजिए कच्ची रहे तो सिर्फ पल मख या लो सुपशे जी की मुझे अगर डायरेक्ट भी नवल गोड़े अक्षली कवल ये गोड़े करना पिंजलास में नटर से या लास में नटर से अभी अच्छे रे राउन हो ये पबीड़ा के हो ये करना फुजिफा कंपनी से फास्ट स्किन पॉलिश इस्तेमाल और तो देना फायदा हो बेहतरीन प्रोडक्ट बेहतरीन रिजल्ट वेर कवल वाला फुजिफा कंपनी शिफा स्किन पॉलिश जरूर इस्तेमाल कीजिए कलर खाली सुख तेरे सर क्यों जिन्हें कॉल करे सवेलो गुड़ी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी मरवाते इलाके ना रगले सोकर याजो रिजवान रिजवान रिजवान सरंगे शेन ता खुश ना था जिधर संदरे पचे उरक के का सो है
2: ना
0: संदरे पचे उरक के का जिधर चिता का सुधा खाल कोई का कितने मंत्रों ग्राम ना हाँ व्यवस्था का हो जिधर संदरे पचे उरक के को व्यवस्था शाय का हो हाँ नो जे बीजीएम लगाओ नो पागे जे सास दा ऊपर संदरे जे सास दा तो शो है ता तो यो मशवरा ना कदर भी हाँ ता तो बेझे यो मशवरा ना कदर हाँ तो दासे कहो कना चाहिए खामोशाई सरा प्रोग्राम मार वगना बिया बदिजान नस्तड़ाई कीजिए और सरा प्रोग्राम ना बखान दाखले که سندری وی و که خبری وی ده خلق وی ما وی آنه با خوان داخلی هر بی بایش چرنگه ده پاشا نو تقریبا یو کس دا وی چه سندر ده نی پچه و سل کس دا وی چه سندر ده خام خای پچه نو تو ما تو وی وز بسکو صحیح خبر دا حالات کلا کلا بھی پچھے خبر ہاں ضروری وی کال ہاں ضروری وی پروڈکٹ بندے خبر ہاں ضروری وی سندرہ ضروری دا زکا چھے سندرہ چھے گمہ دا کنان دا دے پروگرام حصہ وی کوشش بکو چھے خبر لش لانڈے کو کنا نبیہ با دیر والدہ دن کو تا موقع ملاوی جی صحیح نا چلو جی سلامونہ دشتا اوکی جی یوں جہان مننہ دکال کولے جیرا جیرا مننہ اجی بل کالر ہم اخلی

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: या रात खुशी हो या तन्हाई हर वक्त एक आवाज साथ हो रेडियो अमन 88.4 कारक आपके हर लम्हे।

लम्हे खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज रेडियो अमन 88.4 करत, जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।

खजी बिल्कुल मैसेज इकडे देख रहा ना ना बिल्कुल इश्मा एक नी ड्रॉप चुकम दे पछताना करे ना बिल्कुल लगा चुकम दे चमा मने दानी भी दागो ना भी स्पेशली दाने के चुकम दे डिस याद मतलब चार के भी नौ तो से बिल्कुल बने वाले के इंशाल्लाह दानी में बिल्कुल वहां में नमी ने ना दिया द टांग ने मैसेज करे दे डेर आज तो मने ना दिया जे प्रोग्राम के दे मैसेज को देने लवा मैसेज करे दे मामो विची फर्स्ट टाइम इश्मा प्रोग्राम के मैसेज इधर तक वो जीनत रहमत बाद मैसेज करे डेर रजिया तो मनना इश्मा प्रोग्राम की तरफ वेलकम और हर कल यही फर्स्ट टाइम दे प्रोग्राम के मैसेज बुक यो जहान मनना और मैसेजेस याद करी दी खुश यू मैसेज मिलाओ जो टाइम रस रकम दे वही कहना चे खजी टाइम चुकम दे रसरकम दे मौलाना अब्दुल हलीक से मैसेज करे दे वैसे मौलाना अब्दुल हलीक से करक रेडियो बनावाज होके दी मंगल मिले की हाइबर प्लाजी की दुकान नंबर चार की मोसर देश में टोल प्रोडक्ट मिले बीजी और वैसे जबरदस्त मौसम है डेर अजियो तो मनना मौलाना से यो जहान मनना बिल्कुल मौलाना से सरा मतलब दो दुकान नंबर चार की हाइबर प्लाजी की इसमें टोल प्रोडक्ट मिले बीजी कला हाँ मतलब दस सही न मौलाना से सरा स्टाफ जरूर हुए और युवा फिर अच्छा है चुकम जरूर बना चेषा देना वैसे तारिक भाई शो दे और इट्स मी गुलोनी डेरा जी तो मना ना गुलोनी लोहिया खास मैसेज को बोले वैसे इस्लाम भाई सरंगे जिक्रा हटक ओलिना हटक करकना वैसे इस्लाम में वर्क ना दिया और राबिया था और रोशी हां था डेरा जी तो मना ना इकरा हटक और तो मौका ख्याल गिफ्ट जो हम चुके मिला शो भाई दे इसमें तरफ ना और वैसे इसमें प्रोडक्ट अवेलेबल दी पो हाशिम बेकरी चुकारा कर के सही डेर तो मनना चा मैसेज करे दे साइलेंट हटक मैसेज करे डेर तो मनना थैंक यू यो जहान मनना दिन लवा विच फातमा करक ना बाई दिलरुबा और दिन लवा अनमोलता और ठोल जुगम सलाम बिली दी वालेकुम सलाम डेर तो मनना टाइम दे रसरा खत्म शो द टूल डेज यत मना ना इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम की इनेशमा कॉस्मेटिक प्रोग्राम की उधर सरा यूजल बिया मुलाकात कीजी इशमा प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल की टिक्शा सुमराह प्रोडक्ट इस्तेमाल की रिजल्ट डक प्रोडक्ट सी और सो चुकम दे स्पेशली तो सयद ओ द इशमा हर्बलाइल चूंकि मतलब ड्रा चुकम दे रवाना दो नजदीद हो न आगे बने चुकम ऑफर लगे दला आगा हो लका तकरीबन खत्म शो हो माशाल्लाह करी सिर्फ शो मौलाना सिर्फ शो हमिद खान शो आगा भी मुसरबे द ऑफर चुकम दे आगे पर मौजूद भी सुपर सबूत ड्रा ने भी टिक्शा नो देना जरूर फायदा खुले हर प्रोडक्ट बने कंपनी हेल्पलाइन नंबर मौजूद है कॉल जरूर करिए 0342 311 292 नंबर बने अच्छी चर्चा के ना मिला भी जी नेक्स्ट प्रोग्राम की उधर सकी मुलाकात तेरे पर दौर भाई लगा।